कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट दिलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही दिलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: to the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
5: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
5: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
5: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.com.
8: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी आइए और
7: एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: to the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
7: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
0: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: to the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: ये चंदा शाह थे जो आपद रात ने गवारा कर लिए। अब फरमाइश पे मैं नात पढ़ रहा हूँ शाह ने, और शायर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने इस कलाम के लिए जो कि मैं वादा कर चुका हूँ तो दो बैत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह के दो बैत मैं पढ़ रहा हूँ। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू कादरिया सिलसिले के रूहानी पेशवा फरमाती हैं कि इतन मेरा

0: जीवे मुर्शी कि बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाब।
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: और

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627.
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to
5: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: क्यों चमन में बेसदा मिसल रिम शबनम है तू, लब कुशा हो जा सरूदे बिरब्त आलम है तू।

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

أحدثته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن

Yeah.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए,

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीराज थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
7: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज
1: हर वक्त आपके।
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने। बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
4: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
5: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
5: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548 419 678।
5: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो। आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
7: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
0: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229627.
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3 49, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Asian Radio.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

भर जाओ। आओ बे मुसलमानों, मैं एक ब्याबंद पेश करना। तुसा कुर्बानी सुनिए जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम दी, तुसा कुर्बानी सुनिए जनाब इस्माइल दी। आओ मैं एक बीबी दी कुर्बानी पेश करना, कि मैं सैयद ने कुर्बानी दी है, कि मैं जनाब हुसैन अपने अपने भरा दा साथ दित्ता।

ओ तहाई मुकर्रा जाए दिया हाई मक्तू।

आओ बे मुसलमानों, कासम दे सेरे लुटीज गैन, अकबर दी जवानी लुटीज गई है, अब्बास दे बाजू कपीज गैन, इमाम मजलूम जनाब हुसैन, हुसैन को रोवण वाले हो, मोहम्मद दा कलमा पढ़न वाले हो, ला इलाहा इल्लल्लाह आखण वाले हो, जनाब ज़हरा को पुरसा टेवण वाले हो, ऊहा हुसैन जेदे मुतलक मोहम्मद ने फरमाया हा, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन में से मैं हूँ, हुसैन मुझसे है, ऊहा हुसैन जेदे नास चेंदर है मोहम्मद, आज मैदान करबला दी तनहा खड़ोता आवाज देंदा है, आए कोई मैं मजलूम दी मदद करने वाला हूँ, त्रै वारी आवाज की सैयद ने, कोई जवाब नहीं आया, कई मुसलमान ने जवाब नहीं दिता, मगर प्यूधिया दी बड़ी मोहब्बत होंदी है, और चार साल दी मासूम बच्ची जनाब हुसैन पाक दी ने खैम दे विच अपने बाबे हुसैन दी आवाज सुनिए, बीबी बर्दाश्त नहीं कर सकी, बीबी दौड़िए मैदाने करबला दे पासे, घोड़िया विचो लंघ दी हुई शामिया दी फौजा विचो गुजर करें दी, करबला दी तत्ती रेते दौड़ दी हुई बीबी आई अपने बाबे दे कोल, ऊं पासे जनाब हुसैन अलैहि सलाम ने तलवार जमीन च गड्डी है, कब्जा है तलवार ते मत्था रखे है, ओ पारगाह इलाही दे च पेश थे, याद करें दे परवरदिगार आलम को, एक पास आके बीबी खड़ गई है, बीबी आदी अस्सलाम अलैका यब्ना रसूलुल्लाह, सैयद ने कोई आवाज नहीं दिती, वाल बीबी बाए पास आई है, बीबी आदी अस्सलाम अलैका मैं मजलूम दा बाबा, सैयद ने पूछे कौन जड़ाई वक्त में कुछ सलाम प्या करें दे, बीबी आदी ओ बाबा मैं सकीना आज तुम्हें कुछ सुझान दा नहीं, जिवे बीबी ने अपना तारुफ पेश किया मैं अर्ज करें दा, बीबी आदी ए लाज अर्ज ते ना

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

ਵਿਛੜੇ ਪਾਪ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੇ।

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 07 8।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
5: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
5: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
5: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

भर जाओ। आओ बे मुसलमानों, मैं एक ब्याबंद पेश करना। तुसा कुर्बानी सुनिए जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम दी, तुसा कुर्बानी सुनिए जनाब इस्माइल दी। आओ मैं एक बीबी की कुर्बानी पेश करना, किवें सैयद ने कुर्बानी दित्ती है, किवें जनाब हुसैन अपने अपने भरा दा साथ दित्ता है। मैं अर्ज कर रही हूं, शब्बीर कुठाई विच कर बल दे ओ तहाई मुकर जाए दिया हरी मकतूल

ओबे मुसलमानों, मैं एक नक्शा पेश कर रही हूँ। खैमे को भा लग गई है, तमाम अहल बैत दे मर्द कुर्बान थी गए। आइए बीबी मैदान करबला दी कैदी थी के ओ जड़िया रस्सियां पेश की थी। शिमर ने बीबी ने कुछ अपने हाथों को बदियन, कुछ इमामे जनलाब दिन दे गल को बदियन, कुछ बा बीबी ने अपने गलां च बदियन। कैदी थी क्या है बीबी आई अपने भिरा दी लाश ते, जनाब हुसैन पाक दी लाश ते आई। बीबी ने अपने भिरा दी लाश को डिठा है, न कफन है, न दफन है, न गुसल है। बीबी ने अपनी मजबूरी का इजहार किया।

फुल फल सब हुसैन दे वेड़े बेवस पुछना हुसैन ने की ते।

आओ मुसलमानों, मौला तो तलवार दा वार हो गया, अर्श फरिश्ते गम दे बदल छा गए, हुसैन दा बाबा ओ वसीए रसूल शौहे बतूल हालत रकूब ज़कात देवन वाला मोहम्मद दा भिराओ शहीद थी गया। ए हालत पुरावी जी में तहरीर की।

मालूम थींदे अमड़ी जाए कोई उम्मत लोड बसाया किवें ख्वाब दर हुणे हुणे मैं कूं अमड़ी आन जगाया उठी जाए नब ढल गई सर तू हो जो प्यू गरीब दसाया आओ बे मुसलमानो भैन दी हालत देख के डूए शहजादे मस्जिद दे पासे दौड़ पेन अते दुखी बीबी जैनब आलिया ने सर विच खाक चरवाइए मस्जिद दे पासे मुंह चा कीते अते आवाज आंदी ए बिंत बतूल दी ऊं वेले ए आंदी हाई फरियादे यतीम न करे हा बाबा साईं सकू अंदर।

खुदा दे विच परदेस दे बाबा मैडा रोड नहीं औलाद ओवे मोमिनो ओ मुसलमानो ई पासे ई हालत थई ए ऊ पासे इक आवाज आंदी ए मैं अर्ज करा

कोई कफन फाड़ेंगे हम भी। आओ बे मोमिनो, आओ मुसलमानों, मौला तो तलवार दवार हो गया, अर्श फरिश्ते गम दे बदल छा गए, हुसैन दा बाबा वसी रसूल शौहरे बतूल हालत रकूब ज़कात देवन वाला मोहम्मद दा भिराओ शहीद थी गया। ये हालत पुरावी जी में तहरीर की।

حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: to the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेड फाउंडेशन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्रे खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
0: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
7: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Asian Radio.
8: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।
7: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444. Or donate online at ikca.org.uk.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: Main Paintan Park de ghar da khadim Inayat Hussain Bhatti thadi khidmat vich hazir haan. Je aaj band main record kara reha haan, thadi khidmat vich pesh kar reha haan. Eh oh band hin ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮੈਡਮ ਉਸਨਾ ਮੈਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਕਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਤਮਾਮ ਯਾਰੋ ਅਨਸਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਏ। ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਜ਼ਾਲਿਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਦ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਏ, ਖੈਮੇ ਕੋ ਭਾਲ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੈਮੇ ਕੋ ਭਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਖਿੰਨ ਕੇ ਬੜੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਗਈ, ਬਲ ਬੜੇ ਖੈਮੇ ਕੋ ਭਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਲ ਬੜੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਗਈ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤਰੀਜੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆਹਣ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਖੈਮੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਖੈਮੇ ਕੋ ਭਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਮਰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅਹਿਲ-ਬੈਤ ਦੇ ਖੈਮੇ ਕੋ ਭਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਤਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਖਸ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਿਮਰ ਚਾਦਰਾਂ ਖਿੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਕੋ, ਉਹ ਤਤਹੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੋ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਚੜੀ ਕੋ, ਅਲੀ ਦੀ ਜਾਈ ਕੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ

भर जाओ। आओ बे मुसलमानों, मैं एक ब्याबंद पेश करना। तुसा कुर्बानी सुनिए जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम दी, तुसा कुर्बानी सुनिए जनाब इस्माइल दी। आओ मैं एक बीबी दी कुर्बानी पेश करना, कि मैं सैयद ने कुर्बानी दी है, कि मैं जनाब हुसैन अपने अपने भरा दा साथ दिता है।

ओ तहाई मुकर्रा जाए दिया हाई मक्तूल

ओबे मुसलमानों, मैं एक नक्शा पेश कर रही हूँ। खैमे को भा लग गई है, तमाम अहल बैत दे मर्द कुर्बान थी गए। आइए बीबी मैदान करबला दी कैदी थी के ओ जड़ियां रस्सियां पेश की थी। शिमर ने बीबी ने कुछ अपने हाथों को बदियन, कुछ इमामे जनलाब दिन दे गल को बदियन, कुछ बा बीबी ने अपने गलां च बदियन। कैदी थी क्या है बीबी आई अपने भिरा दी लाश ते, जनाब हुसैन पाक दी लाश ते आई। बीबी ने अपने भिरा दी लाश को डिठा है, न कफन है न दफन है न गुसल है। बीबी ने अपनी मजबूरी का इजहार

आओ मुसलमानों, मौला तो तलवार दा वार हो गया, अर्श फरिश्ते गम दे बदल छा गए, हुसैन दा बाबाओ वसी रसूल शौहर बतूल हालत रकू विदकात देवन वाला मोहम्मद दा भिराओ शहीद थी गया। ये हालत पुरावी जी में तहरीर की।

थींदे अमड़ी जाए कोई उम्मत लोड बसाया किवे ख्वाब दे विच हुणे हुणे मैं कूं अमड़ी आन जगाया उठी जाए नब ढल गई सर तू हो जो प्यू गरीब दसाया आवे मुसलमानो भैन दी हालत देख के डूए शहजादे मस्जिद दे पासे दौड़ पेन अते दुखी बीबी ज़ैनब आलिया ने सर विच खाक चरवाई है मस्जिद दे पासे मुंह चा कीते अते आवाज आंदी है बिंत बतूल दी वेले ए आंदी हाई फरियादे यतीम न करे हा बाबा साईं

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीराज थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

अपना घराना और अपना खून बहाना मंजूर कर लिया, मगर इस्लाम की अजमत पे फर्क आए या आपको बर्दाश्त ना था। और जब हजरत इमाम हुसैन को यकीन हो गया कि मसालियात की कोई सूरत बाकी ना रही है, ये लोग शहर में दाखिल होने देते हैं ना वापस जाने देते हैं ना मुल्क छोड़ने देते हैं, इसलिए अब जंग को रोकने का कोई तरीका बाकी ना रहा। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने अपने खेमों के गिरदे खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक खोदी गई और उसकी सिर्फ एक राह निकाली गई जहाँ से निकल कर दुश्मनों से

था नजर आली मकाम ने अहले बैत तमाम रफ़का के साथ फजर की नमाज अदा की।

दुश्मनों की खून से जमीन को लालाजार कर दिया और इसी तरह खानदान इमाम हुसैन के नौजवान अपनी बहादुरी के जौहर दिखा दिखा कर इमाम हुसैन पर कुर्बान होते चले गए। तमाम शहजादे शहीद होते चले गए। अब इमाम के सामने अली अकबर दुश्मनों पर हमला आवर हो गए।

दोस्तों, हमें भी ये चाहिए कि हम हमेशा हक का साथ दें, सच का साथ दें। आजकल के दौर में जो बेसुकूनी है, आजकल के दौर में जो अफरा तफरी है, आजकल के दौर में जो लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, उसकी वजह सिर्फ यही है कि आज हम सच को पसंद नहीं करते। उसकी वजह यही है कि आज हम हक की खातिर लड़ते नहीं हैं। आज हम मसलियत के तहत आंखें बंद कर दिया करते हैं, कोई जुल्म होते देखते भी। अगर कोई जालिम सामने आ जाए तो हम उसके आगे सर झुका देते हैं। यही वजह है कि आज हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। पिछली तारीख उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि हम क्या थे, कितने बहादुर हुआ करते थे हम। लेकिन आज न जाने क्यों हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि हम बहादुर तो क्या बुजदिल भी कहलाने के लायक नहीं रहे। वाकया करबला हमारे लिए ता कयामत उस दुख की याद दिलाता रहेगा

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने। बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk.

0: Maureen Sheikh on Bradford Asian
1: Radio. सामीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन बहुत ज़्यादा बहादुर थे, और जिस वक्त उनको ये पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें धोखे से बुलाया गया है, तो उसके बाद उन्हें कहा गया कि कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि जैसे मुस्लिम बिन अकील की वहाँ पर उन्हें शहीद किया गया, उससे पहले उन्होंने उन्हें बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि ये धोखा दे रहे हैं और ये आपको शहीद कर देंगे, तो आप खुदा अल्लाह यहाँ ना आइए, बल्कि अपने ख़ानदान को तो बिल्कुल मत लेकर आइए, ये आपको शहीद कर देंगे और मुझे पता है कि मैं शहीद कर दिया जाऊँगा। सो आपने इस बात की परवाह ना की और आप चल पड़े कूफा की तरफ। कूफा के लोग इंतहाई छोटे और मक्कार थे। जिस वक्त ये बहुत पहले की बात है कि जब यजीद के लिए बैत की बात चली, तो वलीद बिन उक्बा ने कहा कि अभी और इसी वक्त हज़रत इमाम हुसैन से बैत करवा ली जाए, तो बल्कि मरवान बिन हाकिम थे जिन्होंने कहा कि इन्हें जाने ना दिया जाए। आपने फौरन वलीद बिन उक्बा से कहा कि तू मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ, और दो टोक कहा कि मैं किसी जालिम फासिक फाजिर आदमी के सामने ऐसे अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करूँगा, और मैं से फौरन उन्होंने जज्बात में आकर तलवार निकाली और कहा वलीद बिन उक्बा, तुम्हें पता है कि मैं हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हूँ, मेरे नाना कौन थे ये तुम जानते हो, हमारे घर फरिश्ते आते रहते हैं, कुरान उतरा है मेरे नाना पर, मैं एक सालिम और फाजिर आदमी के हाथ पर बैत हरगिज़ नहीं लूँगा, हरगिज़ बैत नहीं करूँगा। आपने यजीद के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने नंगा किया। ताहयात लोग इस पर लानत इसीलिए डालते रहेंगे कि अगर हज़रत इमाम हुसैन ये सब कुछ ना करते तो यजीद की असली शक्ल कैसे आती। एक और बहुत खूबसूरत सा

0: तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: सामीन, पिछले दिनों मैंने एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो देखा. बाजारी शाम, दरबारी शाम के लिए रोज़े बीवी सकीना फरहान अली वारिस वहाँ से एक वीडियो बनाकर उन्होंने सेंड किया. और जब मैंने उसे देखा तो मेरे आंसू नहीं थमने को आ रहे थे. एक एक जगह को उन्होंने दिखाया कि कहाँ कहाँ बीवियों को खड़ा किया गया, आले रसूल को किस कदर रुस्वा और किस कदर उन लोगों ने नाउस बिल्ला जहिर किया. इतने दुख परे अगर आप आंखें बंद करके उन मनाजिर को महसूस करें तो शायद अगले लम्हे आपको एक भी पल करार ना आए. ऐसा ही हुआ मेरे साथ. वो दिन मेरा बहुत उदास गुजरा और मैंने वो तमाम जगहें देखी और मैंने कहा कि उस वक्त के लोग कितने संदिग्ध थे जो उन पर पथराव भी करते थे, उन पर बातें भक्तियाँ कसते थे और वो भी आले रसूल पर. सोचती हूँ कि वो सब तो जन्नती थे और अपना इम्तहान से गुजर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने भी उन पर जुल्म किया आखिर उनको किस किस्म की सज़ा आखिरत में मिलेगी. सुनते हैं एक बहुत ही दर्दनाक सा नोहा फरहान अली वारिस की आवाज.

0: Maureen Sheikh
1: on Bradford Asian Radio.
2: नासिर जहां की आवाज में ये बेहद दर्द और बहुत सोच के साथ पड़ा हुआ एक नोहा मैं बचपन से सुन रही हूँ।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
7: टैक्सी लाइसेंस,
5: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड, 01274201667।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
5: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
5: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
5: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिगो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिगम सुपर स्टोर। मेनिगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मेनिगम सुपर स्टोर।
2: मेनिगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
7: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
0: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पाउंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 7 8।
7: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Asian Radio.
8: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: to the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: जेड़े जनाबे बासलमदार जख्मी हो गए ते जनाबे हुसैन पाक आप दे कोल पहुंचे ते जनाबे बासलमदार ने कर्ज की कि मौला मेरी लाश खेमे दे विच ना ले जाना इस वास्ते जे मैं मासूमा ले पानी लैण वास्ते आया सा जे मेरी लाश खेमे च गई ते मेरी लाश मासूमा तू शर्मिंदा हो गई आप दी वसीयत दे मुताबिक आप दी शहादत दे बाद जेड़े ले मौला हुसैन बगैर आप दी लाश दे खेमे च आए ते जनाबे अब्बास अलमदार दी छोटी जी बच्ची आप दी लाश दा इंतजार कर रही सी जेड़े लो ने वेख्या के जनाब हुसैन आप दी लाश लेके नहीं आए ते जी में गिला की तरह मासूमा ने जनाब सैयद पाक से मैं वो गिला पेश करना
1: घी अब्बास दी अर्ज कीता

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8.
7: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444. Or donate online at ikca.org.uk.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: मैं पंचन पाग दे घर दा खादिम इनायत हुसैन भट्टी थाड़ी खिदमत च हाजिर हां। जे आज बंद मैं रिकॉर्ड करा रहा हूं, थाड़ी खिदमत च पेश कर रहा हूं, ए ओ बंद इन जेड़े महकू मैडम ओसना मेडे अजीज ने फरमाइश की है, मैं हजूर की खिदमत इस पेश करा। पहला बंद जेड़ा मैं आपकी खिदमत इस पेश कर रहा हूँ, मकाम दा है जेड़े ले तमाम यारो अंसार मजलूम करबला दे शहीद थी गए, हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दे दी है, तमाम जालिम पीछे रह गए, इमाम जैनुल आबदीन मर्दा च वाहिद बाकी बचे, शिमर कमीने दे फौजी आए खेमे को भाल लावनी शुरू कर दी है, एक खेमे को भाल लगी है, दीदी अपने निके निके बालों को खिन के बड़े खेमे च गई, बाल बड़े खेमे को भाल लगी है, दीदिया बाल बड़े खेमे च गई, जनाब जैनब ने अपने भतरीजे इमाम जैनुल आबदीन को जड़े बीमार आ सहारा दिता है, आखिरी खेमे च आए हैं, खेमे को भाल लगी है, उन पासे शिमर को पता लग गए, जो अहल बैत दे खेमे को भाल लग गई है, वो ततहीर दिया मालिक दिया चादर खस गई है, शिमर चादर खिन के आया है, जिमे ऊ चादर दिखती है जनाब जैनब को, वो ततहीर दी मालिक को, रसूल दी बछड़ी को, अली दी जाई को, वो मैं पेश करना किवें चादर दिखती है, किवें पर्दा दिता है। और

भर जाओई। ओ बे मुसलमानो, मैं एक ब्याबंद पेश करना, तुसा कुर्बानी सुनिए जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम दी, तुसा कुर्बानी सुनिए जनाब इस्माइल दी। ओ मैं एक बीबी कुर्बानी पेश करना, कि मैं सैयद ने कुर्बानी दी है, कि मैं जनाब ज़ैनब ने अपने भरा का साथ दिता है।

ओ तहाई मुकर्रा जाए दिया हाई मक्तू।

आओ मुसलमानों, मौला तो तलवार दा वार हो गया, अर्श फरिश्ते गम दे बदल छा गए, हुसैन दा बाबा ओ वसीए रसूल शौहरे बतूल हालत रकूबे ज़कात देवन वाला मोहम्मद दा भिराओ शहीद थी गया। ये हालत पुरावी जी में तहरीर की।

अब मैडा रोज नहीं औलादे। ओ बे बोमिनो ओ मुसलमानो ई पासे ई हालत थई है ऊ पासे इक आवाज आंदी है। मैं अर्ज करा

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने। बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफे राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

geçer Medine'den gurbet.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257।
4: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी आइए और दीदा से।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
5: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
5: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
5: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Huzur Akram Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jab hijrat karke Madina Munawwara tashreef le gaye to bachiyon ne daf baja kar آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔